0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4?
1: 4।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यही 4-5 दिन में।
2: 4 या 5? 5।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 106.2

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार। कब तक वापस जाएगा? यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
4: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big.
5: Yeah, check it out.
4: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 101.2, The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटाएगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
5: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big. Big 106.2, The Beat.

0: of Bollywood. High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure. Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Mina Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग विद सेड प्ले द कंफ्यूजन हटाओ।
0: बिग विद सेड Saturday 7-9 PM and Sunday 8-12 PM only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2.

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: मैंने ना फैसला किया है।
2: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
1: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ?
0: Less scrolling, more scrolling on watch list. This is the Big Binge only on Big 106.2 The Beat.

बिग 106.2 पर इट इज टाइम नाउ फॉर द बिग बिंज, वो शो जो जो प्रॉमिस करता है वो करता भी है, यानी कि आपके वीकेंड का हार्ड अर्न टाइम बचाता है. क्यों, व्हाई वेस्ट योर टाइम लुकिंग फॉर रिव्यूज, सर्चिंग फॉर शोज टू वॉच व्हेन आई एम हियर, व्हाई फियर व्हेन सिड इज हियर का ये लंबा चौड़ा वर्जन था. बिग बिंज पे हम बात करते हैं अबाउट एन ओटीटी शो, पीस ऑफ कॉन्टेंट, कुड बी एन ओटीटी फिल्म. सिर्फ एक ही शर्त है, इट हैज टू बी एन ओटीटी रिलीज, राइट? सो इफ यू गॉट अ रिकमेंडेशन, ऑलवेज यू कैन मैसेज अस, डीएम अस ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग एफएम, यू कैन इवन व्हाट्सएप 0543091062 पर. आज हम किसकी बात करने वाले हैं? ऑल ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम अ सय्यारा हैंगओवर, इट हैज समथिंग टू डू विद दैट. सो कुछ देर में पर्दाफाश करूंगा, इट्स गोइंग टू बी रिवील्ड दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द ओटीटी शो दैट इज गोइंग टू बी इन फोकस टुडे. दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड.

106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड. आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट हुनकार द रोर एंड द बिगेस्ट रीजन टू वॉच हुनकार इज द परफॉर्मेंसेज. हुनकार की बात करें सैयारा के बाद एवरीबडी वाज वेटिंग टू सी व्हाट अनीत पड्डा वुड डू नेक्स्ट, बट या दिस इज व्हाट शी इज चोजन टू डू एंड द परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग. अनीत पड्डा इज रियली रियली गुड. इज शी द फ्यूचर? शी सीम्स टू बी लाइक इन दैट next Alia Bhatt kind of mold. I'm telling you, there's none of the glamour of Sayyara in this one. Meenu ek angry hai, dari bhi hai, stubborn hai, vulnerable at the same time, very difficult to understand. Kuch aisi harkatein karti hai jo ki samajhna mushkil hai, namukin hai. And Anit doesn't try to make her very conventionally likable, right? But for me, this show belongs to रघुबीर यादव. एक मास्टर क्लास है इन रियल एक्टिंग, राइट? हिज बाबजी का कैरेक्टर डजंट नीड टू स्क्रीम और बिहेव लाइक अ मूवी विलन. ये सॉफ्ट स्पोकन है, काम, ऑलमोस्ट एक रीअश्योरिंग प्रेजेंस है इनकी स्क्रीन पर, विच एक्चुअली मेक्स इट फार मोर अनसेटलिंग बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू अनलाइक हिम, राइट? सो फातिमा सना शेख इज सॉलिड. Investigating police officer hai Mohammad Zeeshan Ayub, Ram Kapoor, they add serious wazan, and I'm not talking about the physical wazan of Ram. I'm sorry. Lekin jaise hi legal battle shuru hota hai, courtroom drama shuru hota hai, naya gear ye show pakad leta hai. 6 episodes ka matlab hai thankfully 15 ghanton ka commitment nahi hai. And what really works for Hunkar is that it's tense, uncomfortable and very very watchable. Those are the really good aspects of Hunkar. Coming up next, what are some of the not so good things about Anit Padda and Raghubir Yadav's Hunkar the Roar? Coming up on the Big Binge with me, Sid.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

Big 106.2 where this is the Big Binge with me, Sid. We're talking about Anit Padda and Raghubir Yadav's Hunkar, The Roar. It's a six-part series out on Stars Play, and we've spoken about the really good aspects. Performances are mind-blowing. Courtroom drama is intense, as it should be. Now it's time to talk about the negative aspects of the show. And पता है प्रॉब्लम क्या है हुनकार का, वही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम अबाउट हुनकार इज द जॉनर एंड द फैक्ट दैट यार थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है. इट इज कम्पीटिंग अगेंस्ट यू नो शोज लाइक आश्रम, सिर्फ एक बंदा काफी है, महाराज, वेरी फेमिलियर ओटीटी टेरिटरी, पावरफुल गॉडमैन है, उसके अंधभक्त हैं, देयर इज अब्यूज एलिगेशंस, पुलिस का प्रेशर, पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस एंड देन एक कोर्टरूम ड्रामा. सो हुनकार को जरूरत थी एक्सेप्शनली शार्प राइटिंग की टू एक्चुअली फील फ्रेश कि ये सब मटेरियल में से गुजरते हुए इफ यू आर एबल टू मेक अ मार्क सच अ चैलेंज वाज क्वाइट बिग, राइट? सो एंड दैट्स वेयर इट ओकेजनली काइंड ऑफ स्लिप्स. सब प्लॉट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जिनका यू नो डेप्थ नहीं है, काफ़ी शैलो लगते हैं एंड कुछ रेपिटेशंस भी हैं. इट सीम्स अ बिट रेपिटेटिव द स्क्रीन प्ले समटाइम्स, और ज़्यादा ही एक्सप्लेन जब करता है ना स्क्रीन प्ले तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है मुझे. याद है परफॉर्मेंसेज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड परफेक्टली वेल, लेकिन एक बार जो बात कह दी उसको दोबारा कहने की क्या जरूरत है वाली फीलिंग आपको आएगी, कहीं कहीं पर आएगी, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है. क्योंकि जब भी अनित पड्डा, रघुबीर यादव स्क्रीन पर दिखते हैं साथ में, यू कैन सी द मच मोर स्ट्रॉन्गर सीरीज हाइडिंग इनसाइड दिस वन. सो बेसिकली परफॉर्मेंसेज एक्चुअली रोर लाउडर देन द स्क्रीन प्ले. दैट्स द बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ हुनकार द रोर. अब यह हो गई ज्ञान की बात, इसे देखें या रहने दें, शुड यू स्ट्रीम इट और स्किप इट, द वर्डिक्ट कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

Big 106.2 but this is the Big Binge with me, Sid. It is now verdict time. You're talking about Hunkar, the roar, and the question is, does it roar enough for you to stream it, or should you be like, nahi yaar chodo, should we skip it? And the verdict is, you should stream it. Isliye nahi, because ye kuch aisa karta hai show jo ki aapne kabhi dekha nahi hai. Nahi, aisa kuch bhi nahi hai. Lekin isliye kyunki ek familiar si kahani ko lekar कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस के साथ इसको पैकेज किया गया है दैट इट्स जेन्युइनली वर्थ वॉचिंग. वॉच इट फॉर द परफॉर्मेंसेस. अनीत पड्डा प्रूव करती है दैट सैयारा वॉजन सिंपली लाइक अ फ्लैश इन द पैन. इट वॉजन अबाउट डिस्कवरिंग अ न्यू स्टार. देयर इज एन एक्टर हियर हु इज क्लियरली विलिंग टू टेक रिस्क एंड हाउ रिफ्रेशिंग इज दैट हियर. देन देयर इज द लेजेंड रघुवीर यादव. यू ऑल ग्रू अप यू नो वॉचिंग हिज परफॉर्मेंसेज एंड ही रिमाइंड्स यू. याद दिलाते हैं कि समटाइम्स द स्केरिएस्ट विलन इन द रूम इज द वन हु नेवर नीड्स टू रेज हिज वॉइस. आई मीन दिस इज वन ऑफ दोज परफॉर्मेंसेज दैट इन माई ओपिनियन शुड बी रिमेंबर्ड इन द डेज टू कम. कि कैसे यार विलेन का कैरेक्टर लेकर उसको री इमेजिन किया हुआ है एंड वेन इट्स सो डिफिकल्ट टू डिसलाइक समबडी then how can you accept him as the villain. That's what Raghubir Yadav has conveyed. Such a complex emotion. Writing thodi tight ho sakti thi, story aur zyada original ho sakti thi, lekin 6 episode ka investment zyada to nahi hai. So for the Big Binge this week, Hunkar the Roar, the verdict is stream it. Just don't expect the story to surprise you as much as the performances do. जैसे हुनकार का एक टैगलाइन है द रोर, वैसे ही मेरी वर्डिट का भी एक टैगलाइन है. दिस इज द बिग बेंच विद मी सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिरन। आई जस्ट रियलाइज समथिंग दैट मैं अभी तक इन ऑल द एपिसोड्स दैट आई बीन डूइंग एक भी स्किप इट वर्डिक्ट मैंने नहीं किया यार, कुछ करना पड़ेगा इसका। या इफ यू गॉट अ रिकमेंडेशन देन लेट मी नो। नहीं, नॉट ऑफ सम शो दैट आई कुड वॉच, वेस्ट माई टाइम एंड देन टेल यू टू स्किप इट। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज मेरे साथ। लेकिन इफ यू हैव अ शो दैट यू आर कन्फ्यूज अबाउट या और एन ओटीटी मूवी दैट यू आर कन्फ्यूज अबाउट कि यार मेरे वॉच लिस्ट पे है तो सही लेकिन आई एम नॉट गेटिंग द करेज टू एक्चुअली गो एंड वॉच इट। सिड, एक काम कर यार, तू पहले लाइन में खड़ा हो जा। बिफोर आई वॉच इट यू वॉच इट एंड प्लीज रिव्यू इट सो दैट आई एम एबल टू सेव अ लॉट ऑफ माई टाइम स्पेशली ऑन द वीकेंड। सो आई विल डू दैट, दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई एम हियर फॉर। यू कैन ऑलवेज डीएम अस ऑन आर इंस्टा, आर पेज इज 106.2 बिग एफएम, 106.2 बिग एफएम। वहां पर जाइए एंड लीव योर रिकमेंडेशंस फॉर व्हाट आई शुड बी रिव्यूइंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट weekend. I'm Sid Seth, SIDSETH. You can follow me as well on Instagram. I'm going to be seeing you very, very soon. Aap jante hain, I do the morning show on a weekday from 7 to 11. It's called The Big Breakfast. Till later then, enjoy the rest of your weekend. Bye-bye.

0: On number 38 this week from Vibe, that was Aisi Meri Vibe. Playing in the top 40 biggest hits of the week with the big Bollywood countdown right here on Big 106.2. Main hoon Mansi, and the movie is all set to hit Amazon Prime Video, the OTT platform, on the 13th of November. Great reviews so far इस movie के आए हैं. अगर आपने theater में miss कर दी है, 18 September को ये movie theater में release हुई थी, but now you'll get to see the movie Amazon Prime पे on the 13th October. इसे कुणाल खेमू ने direct करा है, लिखा है, and the movie follows two unprepared friends जो accidentally एक हाई स्टेक इंटेलिजेंस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं. कुणाल खेमू के साथ यू'ल गेट टू सी प्रीटी ज़िंटा आल्सो इन द मूवी. इस हफ्ते वाइब से ये गाना था ऑन नंबर 38. मूविंग ऑन 37, अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन, इन फैक्ट ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. मैं बात कर रही हूँ वी वन की.
1: तो समझो ना मेरे दिल की इल्तिजा, तुम्हें मिलके हर दफा कोई जादू.
0: स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया.
1: तो समझो.
0: It is a horror comedy, but fantastic reviews so far. So over the weekend, if you feel like watching a movie in the theater, I recommend you watch V1. On number 36, we've got the Mondal Brothers. Gana originally unka hai, recreate hua tha Pati Patni aur Wo Do ke liye. Yeah, big Bollywood countdown playing the top 40 biggest hits of the week. Main hoon Mansi.
2: The Big Bollywood Countdown, the part of the Big Weekend, Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने.
5: 2 या 4? 4.
4: कब तक वापस जाएगा?
5: यूं ही, यहीं 4-5 दिन में.
4: 4 या 5? 5.
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
2: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 37.

0: I think 2026 so far has been a year for us millennials to relive our prime. Ek aur movie jo hamari prime mein release hui thi, and of course recreated Gaana. We loved Katrina Kaif and Akshay Kumar in this one, the OG one. But I have to say, they've done a great job in recreating Uncha Lamba Kad this week on number 35. Playing in the top 40 biggest hits of the week, yeh hai Big Bollywood Countdown. If you're a fellow millennial, over the weekend, we have a millennial exclusive playlist called the Big Millennial Weekender. So you're in for a treat. Filhal on number 34, we've got a beautiful one, Jasmine Sandler's and Dr. Satinder Sartaaj ke awaaz mein. For all those who know him from this song, इन्होंने काफ़ी और गाने भी गाए हैं. इनफैक्ट इन्होंने PhD की है सूफी सिंगिंग में. ही इज़ बिन अ वेरी पॉपुलर एक्टर व्हेन आई टॉक अबाउट पंजाबी सिनेमा. एंड बॉलीवुड की भी बात की जाए तो सतिंदर सरताज का एक और गाना अक्षय कुमार परिणीति चोपड़ा की मूवी केसरी से बहुत पॉपुलर हुआ था, कॉल्ड जलसा. बट आई हैव टू से दिस सॉन्ग इज अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर.
1: सानू सारियां विसर गईयां रावा वे केड़े पासे जाइए.
0: One of the biggest albums and movies of 2026 from Dharandhar 2. This week on 34, on number 33, we've got Anuv Jain from Coke Studio Bharat.

0: 18.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: Number 17, Dhurandhar 2 se, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. This is the Big Bollywood Countdown. I am Mansi, playing you the top 40 biggest hits of the week. We've got a brand new entry, Seedha. गाने ने एंट्री मारी है नंबर 16 पे. ये प्रेम मोल ले लिया का दूसरा गाना. मूवी तो 27 नवंबर को रिलीज होगी, बट वी गॉट आर गरबा आर नवरात्रि एंथम. हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है एंड दिस सॉन्ग मार्क्स हिमेश's फर्स्ट एवर गरबा कॉम्पोजिशन. आयुष्मान खुराना, शर्वरी गरबा करते हुए, फेस्टिव एनवायरमेंट है एंड राइट एंट्री ली है इस गाने ने एग्जैक्टली फेस्टिव टाइम्स पर. दिस हैज टू बी द नवरात्रि एंथम ऑफ द ईयर.
1: रातों की रात आई, मन्नत भी साथ लाई, जय अम्बे जय अम्बे.
0: एंड टाइमिंग इतनी सही है इस गाने की, विद इन टू डेज 40 मिलियन व्यूज हो गए इस गाने के ऑन यूट्यूब एंड इट इज अ वायरल नवरात्रि एंथम दिस वीक ऑन नंबर 16.
2: नंबर 16.

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: The Big Bollywood Countdown, Big 106.2, The Beat of Bollywood, Number 14.

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Playing you the biggest hits of the week with the Big Bollywood Countdown. Main hoon Mansi. Topic of week one se thumak thumak. V1, The Force of Forest. It is a fantasy thriller. Jo release hui last week on the 25th of September. Great reviews coming in. Deepak Kumar Mishra ki movie hai. Jinhone Panchayat banai hai. The web series Panchayat. And this movie marks a unique collaboration between Balaji Motion Pictures and TVF. Tanish Bagchi ne likha and compose kiya hai ye gana is hafte number 12 par. देखो ना ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक वो चली आंख लड़ा के दिल को उड़ा के देखे कोई मेरी जान जली ठुमक ठुमक ठुमक आकाशा सिंह देवनागी की आवाज चली आंख लड़ा के फीचरिंग तमन्ना भाटिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा इसी के साथ और नंबर 11 अगेन तनिष्क बागची राइट हियर ऑन बिग 106.2 ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन मैं हूं मानसी
0: Number 12.

रानी जी के साथ once again इस हफ्ते भी नंबर वन पे चिपका हुआ है पब्लिक की भारी डिमांड पर। Playing in the top 40 biggest hits of the week, ये है Big Bollywood Countdown, मैं हूँ मानसी, and without any doubt, without any confusion, still a hit, still on number one, was a hit then, and I think is one of the biggest songs of 2026. Imran Hashmi from Awarapan 2 इस हफ्ते भी नंबर वन पर।

ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन फैन एडिट्स बने हैं इस गाने के ऑन सोशल मीडिया एंड फिलहाल ऑन यूट्यूब ऑल्सो स्टैंडिंग एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स व्हेन आई टॉक अबाउट बॉलीवुड. ओरिजिनल गाना 2007 में आया था मुस्तफा जाहिद प्रीतम एंड हैज ओवर 118 मिलियन व्यूज बट 2.0 भी ज्यादा पीछे है नहीं फिलहाल स्टैंडिंग ऑन अ 20 मिलियन. इसी के साथ टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय. मैं आपसे मिलूंगी मंडे को. यू हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड स्टे राइट हियर. वी हैव गॉट सम फैंटास्टिक म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग एफएम. It is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. Number 2.

0: Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स.
0: Countdown.
2: Here we go.
1: सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स। एंड आज के शो में बात करने वाली हूँ द फर्स्ट आवर अबाउट दिस ट्रिक जो हमने देखा था ना कि फूड कॉम्बोज ट्राई करो, बढ़िया लगते हैं नहीं लगते हैं। लेमन विद कोकोआ पाउडर, इट माइट टेस्ट लाइक कोका कोला, ऐसे लगता था कोला टेस्ट आएगा, नहीं आया। आया मैंने आपको लास्ट वीकेंड बताया था, लेकिन दिस वीकेंड दिस वन मोर थिंग दैट इज गोइंग वायरल एंड दैट इज विद खीरा। क्यूकम्बर के साथ अगर आपको खट्टा पसंद है ना, गोलगप्पे पसंद है, आई थिंक सो आपको ये पक्का पक्का पक्का पसंद आएगा। I love the spicy tangy flavor and if you think you have same palate, keep it locked to Big 106.2.

ये दिल इसको जहाँ भी खट्टी मीठी चीज दिख जाती है ना, फिसल जाता है। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड मैं बात करने वाली हूँ क्यूकम्बर प्लस इमली शॉट। इट्स कॉल्ड द वायरल क्यूकम्बर इमली शॉट, इसका नाम इंस्टाग्राम ने ये दिया है, इट्स गोइंग वायरल। करना क्या है, आपको क्यूकम्बर लेना है, उसका जो उसके सीड्स होते हैं उसको खाली करना है, एंड देन यू हैव टू मेक दिस सिरप ऑफ इमली, इमली प्लस नमक प्लस चीनी, लाल मिर्च, चाट मसाला, एंड पता नहीं क्यों इतने खट्टे में उन्होंने ऑलरेडी लेमन क्यों ऐड किया था, मुझे भी करना पड़ा एज पर द रेसिपी। उस शॉट को आप उस क्यूकम्बर के अंदर डालोगे एंड देन यू टेक अ बाइट, यू टेक अ बाइट एंड यू विल फील इतना खट्टे से, आज जब आप खाओगे तो आपके नैन वैसे भी नहीं खुलेंगे। हाउ मच विल आई रेट दिस रेसिपी जब मैंने टेस्ट किया, लेट यू नो इन अ बिट, अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: 6.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड इस शो में मैं रिकमेंड कर रही थी आपको द वायरल क्यूकम्बर इमली शॉट. कैसे बनता है बता दिया था कि क्यूकम्बर को लेना है, उसके सीड्स अलग करने हैं, उसमें जगह बनानी है ताकि आप वो इमली की डिप डाल सको, इमली का पानी डाल सको. एंड जस्ट नॉट इमली का पानी यार, उसमें नमक जाता है, लाल मिर्च जाती है, चाट मसाला रहता है, लेमन ड्रॉप्स भी जाते हैं और उसमें जो मिर्ची डली हुई है. एंड व्हेन यू टेक वन बाइट वन शॉट जो आपकी आंखें बताती हैं पानी निकाल करके आपने एग्जैक्टली खाया क्या है.
1: कहो ना कहो, ये आंखें बोलती हैं.
0: मैं बता रही हूँ मेरा मुंह खट्टा हो चुका है. जब मैंने ये पहली बार वीडियो देखी थी देखकर ही मेरा मुंह खट्टा हो गया था, लेकिन जब मैंने उसकी फर्स्ट बाइट ली, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, अगर आपका गोलगप्पे खाने का मन करा लेकिन द हेल्दियर वर्जन, हैव दिस. ऊपर से घर पे बन जाएगा, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स है. आई विल रिकमेंड इट 10/10 इफ यू हैव अ स्पाइसी टैंगी पैलेट लाइक मी. एंड ऑल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. द सॉन्ग कहो ना कहो कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस ट्रैक.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड इन दिस आवर मैं रेकमेंड करने वाली हूँ एक नई टाइप ऑफ ड्रिंक। एंड बाय द वे ये ड्रिंक जो है दैट्स द अनऑफिशियल नेशनल ड्रिंक ऑफ यूएई। पता लग चुका होगा अभी तक हम इसे ओमान चिप्स के साथ खाते हैं, लेकिन उसमें ही दो और नए फ्लेवर्स आए हैं विच आई हैव ट्राइड। रेकमेंड करूंगी या नहीं करूंगी बताती हूँ बिट। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

गिप्पी गरेवाल का ट्रैक सॉन्ग का नाम था अंग्रेजी बीट। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड इन दिस आवर मैं बात कर रही हूँ लेवान के बारे में। यार दिस बेस्ट डुओ जो मैंने यहाँ पर आके ट्राई किया था, आई डेंट नो पहले कि इतनी बड़ी हाइप क्या है यार रोमान चिप्स प्लस लेवान की। एंड आई प्रेफर द सॉल्टी वन, मुझे सॉल्ट वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसी में द स्वीट वन में उसमें स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो एड हुआ है। हैविंग सेड अबाउट द ओमान चिप्स एंड लेवान डुओ, मेरी श्योर अभी सुनकर ही आपका मन कर गया होगा कि यार मैं अभी खा लेता हूँ यार एज स्नैक्स और व्हाटएवर, मील कर चुका हूँ तो ठीक है, नहीं तो आई हैव टू गेट दिस। लेकिन अगर आप जा ही रहे हो लेने के लिए देन देयर स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो एज वेल। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, रिकमेंड करूंगी या नहीं करूंगी बताती हूँ ना। विच अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: यही ट्यून यही म्यूजिक बजता है मेरे दिमाग में व्हेन आई हैव दिस परफेक्ट परफेक्ट बेस्ट डुओ लबान प्लस ओमान चिप्स. बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स. एंड लबान के दो नए फ्लेवर्स आए थे यार, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो. मैंने उनको भी ट्राई किया यही ओमान चिप्स के साथ. बोथ आर लाइक ऑफकोर्स मिल्क शेक्स. हालांकि मैं लबान सॉल्टी वाला पीती थी. द बेस्ट पार्ट इज इन दोनों ये जो दोनों नए फ्लेवर्स है उनका प्राइस है सेम. इट्स 1.50 दिरहम्स एंड सच अ क्विक स्नैक. एंड अगर तब भी आपको मीठा लग रहा है ज्यादा आप ओमान चिप्स खा सकते हो. अगर आपको फिर से नमकीन लग रहा है आप मीठा पी सकते हो. आई एब्सोल्युटली लव इट. एंड मुझे ये पता ही नहीं था इतनी देर से कि इट इज एक्चुअली द बेस्ट डू. जब मैंने पहली बार सुना था लाइक इसकी क्या इतनी बड़ी हाइप है यार, अंटिल आई टेस्टेड. लेकिन द ओजी वन ओमान चिप्स plus the original Liban, that's the perfect match. Which one is your favorite flavor of Liban? Let me know. Call karke 800-1062 par ya fir aap mujhe WhatsApp par bhi message kar sakte ho 054-309-1062. Until then, keep it locked to Big 106.2.
1: Hey girl.
2: Hey boy.
1: Would you be my baby doll?
2: Sure.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग रेकमेंड्स, द लास्ट आवर ऑफ माय शो। एंड अक्टूबर शुरू हो चुका है, 30th अक्टूबर से काफी कुछ होने वाला है। देयर इज वन हैलोवीन रन जो होने वाला है, जिसके साथ साथ एक फेस्टिवल है, शेखजाद फेस्टिवल भी अक्टूबर 30th से शुरू हो जाएगा। व्हाट इज इट अबाउट, क्या डेट्स हैं, कैसे जा सकते हो, अगर टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज अ बिग रेकमेंड्स एंड अक्टूबर शुरू हो चुका है एंड अक्टूबर के साथ बहुत और फेस्टिवल्स भी शुरू हो रहे हैं. शेखजाद फेस्टिवल इस साल का शुरू हो जाएगा अक्टूबर 30th से एंड विल रन फॉर 136 डेज अंटिल मार्च 14th. एंड जब भी कोई फेस्ट की बात होती है ना यार, कॉन्सर्ट्स होते हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट होती है, घूमने फिरने की जगह होती है, पहुंची जाती हूँ. वेल, आपको कैसे पहुंचना है, इट्स इन अबू धाबी एंड इमिराती हेरिटेज होगा, ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स एंड परफॉर्मेंसेज होंगी, ग्लोबल एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे आपको. उसके साथ साथ दिस इज वन इज माय एक्चुअली फेवरेट ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, कैमल रेसिंग, एंड दिस इज द फैमिली फोकस्ड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होंगी बच्चों के लिए, विजिटर्स के लिए. तो भाई अगर आप जा रहे हो अक्टूबर 30th के बाद अबू धाबी, कभी भी इस फेस्ट में जाना तो बनता है. आई विल हाईली हाईली रिकमेंड इट. बताती हूँ, एक और चीज शुरू हो रही है, 31st को हैलोवीन होता है, 31st अक्टूबर को, एंड तभी एक और चीज है. क्या है बताती हूँ ना, बिट अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

हैलोवीन आते ही मैं तो यही बोलती हूँ, जरा जरा मुझसे दूर ही रहो। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स। एंड 31st अक्टूबर को हैलोवीन होता है एंड दिस टाइम वेस्ट बीच विल टर्न इनटू अ जायंट हैलोवीन पार्टी ऑन सैटरडे व्हिच इज अक्टूबर 31st, जहां पे रनर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि भाई आप अपने बेस्ट कॉस्ट्यूम्स में आओ। और भाई माय हार्ट इज फ्रजाइल, मैं तो डर जाती हूँ यार, लेकिन अगर आपको मौका मिले, आपको इस रन पे जाना है, तो आप कौन से भूत बन के जाओगे? हाउ अबाउट निकी फ्रॉम ऑब्सेशन? यू टेल मी योर रिकमेंडेशन 0543091062। Until then, keep it locked to Big 106.2. कल मिलती हूँ फिर से मैं आपको 1 से 5 only on the Big Mix.